0: அப்பே வைனையே பாடு சொல்லி வாஸ்கு டிவி போக்குற இடையோ நீக்கே அவதாரமா சாவுத்த
1: கட்டை பரிலைலை கொஸ்கு டிவி போக்னோனி பிட்டி ஆப்னே டிவி பிக்ரியோ அனி பனவுன ஜனல் லாகே கொண்டி பனவுனி புக்கா உலாட்ட ஓயினே
0: तेती कुरामा पनि चिन्ता गर्न पर्छ त सदरमुकाम चरीकोट बाटो चरी घ्याङ जाने बाटोमा रहेको हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स मा लैजाऊ न त्यहाँ त तिम्रो बिग्रेको टिभी मात्र होइन कि मोबाइल घडी सबै पनि हाल्छ नि सके गर्ने
1: त्यसो भए म पनि त्यतैतिर लागिहाल्छु नि होइन त
2: अब आउनुहोस् हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा 32 इन्चदेखि माथिको एलइडी किन्दा दिसौं सिपेमा यहाँ फ्रिज डी फ्रिज एलइडी एलसीडी टिभी मोबाइल साउन्ड सिस्टम सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै सबै प्रकारका टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिन्छ यसका साथै विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बन्ध र अन्य कार्यक्रमका लागि साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत गर्ने ट्रेनिङको पनि सुविधा छ यसमा विशेष गरी 5 जनाको समूह बनाएर आएमा 1 जनालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ
3: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844391042 र 9844010814
4: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज

म्यूजिक MG तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के इट्स ओके तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़के।

टेक्नोलॉजी लकड़ बग्गा जियो जगह चकरे फटा इधर काला उधर काला मिस काला मारो शाला मैं क्या बल्ले काली जैकेट थले योग टिशकम टैट बागड़ बिल्ला डड्डू सब कोका कोला सेवन अप प्राउड टूगी फ्रेंडू बैठे नारो बाल जफर वाल कुड़ी एनी होया मेरा पैड़ा हाल उठ दया बैंक लेंदे कस्टमे मैं नहीं कहना सारे कहते कोका।

एक नंबर को पाताई दुई नंबर बसी का तीन नंबर मागतेर भने के लाई तिम्रो हाम्रो बेलाई तीन नंबर मागते